0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: sip on your extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैने थपलो सात मेगाहर्ज बाट म बद्री प्रसाद सागबाट आज विक्रम संवत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 30 तारीख भाद्र 14 गते आइतबार द्वितीय तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांत बाई जी लगाए थी महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम।

बाटन जाला धन संपत्ति जम्मा गलो पड़ने बाटन जाला धन संपत्ति जम्मा गलो पड़ने लायो खायो अंतिम महासर जानु पड़ने लायो खायो अंतिम महासर जानु पड़ने जति धन भए पनि छोडेर जानु पर्छ जति धन भए पनि छोडेर जानु